बड़ा जुल्मी बादशाह से औरंगजेब ने हिंदुस्तान के लोगों पे इतना जुल्म किया कि हद मुका दी जुल्म दी, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनान लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रौ रीतां ते पाबंदी।

गुर अंगद की ते कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेहबा एक रूप हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए आ हर तुम बड़ अगम अथाह।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है। ठंडी ठंडी हवा वाग रही है। तारे चढ़े हुए ने। शहर दे विचों दो प्रेमी आए। इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकिया। सामने पई संदूकड़ी विच कुछ माया पाई। थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने।

आप सब लोग सुखी बसो। इस जोगी राज ने ए गल कही ते तन गुरु नानक साहब कहन लगे, जोगी राज तुसी की किया सानू समझ नहीं आई, एक बारी फेर कहो। अज तक किसे ने ए सवाल नहीं सी कीता। गुरु साहबा नू घूर के देखिया ते जोगी राज कहंदा है, ए बालके ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं, तुम नहीं जान सकते। गुरु साहब जी कहन लगे, असी जान नहीं सके, ऐसे वास्ते ता पूछिए। ते जोगी राज कहन लगा, ऐ बालके मैं इन लोगों को तीनों लोकों की बातें बता रहा हूं, तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोझी है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। तो गुरु साहब जी कहने लगे, अच्छा चंगा फिर जोगी राज जरा ये दसो, तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानूं है, तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगी राज ने सामने देखिया ती संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे, भाई तेरी संदूकड़ी किथे। ते जोगी राज कहंदा है, गुरु साहबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहब जी आस

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा तो देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया। तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया। एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं ता संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भज्जिया। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

जिन्हां ने गज साढ़े तै तै धोतियां साढ़े तीन तीन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनियां ने तेहरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

धरती बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाए।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया, गल्लां बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़ता ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

मेरे गलों झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपया ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इना पखंडा तू

है तू है, तू हो वनहार, अगम अगाध ऊंच अपार। पहला शब्द श्रवण करो, मीरा दाना दिल सोच।

भगत नामदेव जी अपने शब्द विच यह दसदे हन कि दुनिया दे काम करदे हां परमेश्वर दा नाम किस

कोई लड़का कागज लिया के ओदी पतंग बनांदा है। उस पतंग नू आकाश दे विच

मैं ओदा पुत्र ही नहीं। पोंगड़ा पुत्र नुखे है, ए मां तू कहनी नाम ना जाप, जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है। ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए पर नामदेव राम दा नाम।

तू हसदा खेडदा नहीं, बड़ा उदास रहना। जेड़ा नाम तेनू हसन खेडन नहीं देंदा, बेटा तू उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा। तां तां गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे, मां आखा जीवा विसरे मर जा, आखने औखा साचा ना। ए मां, जे मैं नाम जपना वा ता जीना, जे नाम नहीं ते फिर नानक भी नहीं। आखा जीवा

मैं परमेश्वर दे कोल नू विछड़ के आए। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है। मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है, कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते ए मेरी नाम दी भुख मिट जाए।

तेरे कोल कोई एहो जी पुड़ी है जेड़ी मैं खावा ते मेरे जमा दा ए जड़ा डर है दुख ए दूर हो जाए। एक दुख सकत वार

वैद ने हाथ जोड़ ले, कहिंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ और समझिया सी, पर तू ता आप रब निकले। जेड़े दुख तू दसे ने, इन्हां दुखां दी दवाई मेरे कोल किथे। ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर, मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने, मेरे मन दे रोग दूर।

भाई संगत करो नाम जपो तुहाडे मन दे रोग सारे दूर हो जाणगे। श्री गुरु कयो कर।

सारा शरीर सारा तन कबीर दा देखे कोई बीमारी नहीं दिसदी मैं इनू की दवाई दिया कत नहीं ठौर।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक उन्हां